0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापान, फिलिपाइन, अमरीका और 11 दीगर ममालिक ने बहरा जनूबी चीन से मुतालिक बैन अलाक्वामी सालिसी ट्रिब्यूनल के एक दहाई कबल के फैसले को कबूल करने के चीन से अपने मुतालबे की तजदीद की है। 2016 में ट्रिब्यूनल ने तकरीबन इस पूरे समंदर पर चीन के दावों को कानूनी बुनियादों की कमी और बैन अलाक्वामी कानून की खिलाफ वर्जी की बिना पर मुस्तरद कर दिया था। फिलिपाइन ने मुकदमा दायर किया था। बीजिंग ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। 14 ममालिक ने इतवार को फैसले को 10 साल मुकम्मल होने पर एक मुश्तरका बयान जारी किया। बयान में फैसले को हतमी कानूनी तौर पर पाबंद और कतई करार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 14 ममालिक सालिसी ट्रिब्यूनल के फैसले की तौसीक करते हैं कि चीन के वसी समंदरी दावों की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। बयान में किसी भी ऐसे गैर मुस्तहकम या यकतरफा इकदाम की सख्त मुखालफत का इरादा किया गया जिससे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक हो। जापान के वजीर खारजा मोतेगी तोशिमित्सु ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि चीन का 2016 के फैसले को कबूल करने से इनकार तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल के खिलाफ है और आलमी बिरादरी में कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाता है। चीन ने बहरे जनूबी चीन में अपने इलाकाई दावों को दुरुस्त करार दिया है, जबकि 14 ममालिक ने इस समंदर पर बैन अलाक्वामी सालिसी ट्रिब्यूनल के एक दहाई कबल किए गए फैसले को कबूल करने के अपने मुतालबे की तजदीद की है। चीन की वजारत खारजा ने इतवार को एक बयान जारी किया। ट्रिब्यूनल के फैसले ने, जिसे सालिसी अवार्ड के नाम से जाना जाता है, तकरीबन पूरे समंदर पर चीन के दावों को कानूनी बुनियादों की कमी और बैन अलाक्वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। चीनी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि नामनिहाद अवार्ड रद्दी के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं है जो गैरकानूनी है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसने कहा कि चीन अवार्ड पर मबनी किसी भी दावे और इकदामात की मुखालफत करता है। उसने मजीद कहा कि इस अवार्ड से चीन की इलाकाई खुदमुख्तारी और बहरे जनूबी चीन में समंदरी मफादात मुतासिर नहीं होंगे।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। अमरीकी फौज ने इतवार को ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू किए जिससे एक दिन कबल उसने मुल्क के खिलाफ एक हफ्ते के दौरान हमलों का सिलसिला मुकम्मल करने का ऐलान किया था। इतवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी वस्ती कमान ने ऐलान किया कि अमरीकी मशरकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे उसकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू कर दिए ताकि आपने हुरमत से आज़ादाना तौर पर गुजरने वाले गैर फौजी और तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की ईरान की सलाहियत को कम किया जा सके। और माहिरीन की एक टीम ने कहा है कि वेनेजुएला में गुज़श्ता माह आए 2 शदीद जल्जलों की वजह से बड़ी तादाद में इमारतें तकरीबन अमूदी तौर पर मुनहदम हुई जिसे पैनकेक कोलैप्स यानी तह दर तह इन्हदाम कहा जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूसी इंटेलिजेंस अफसरान ने यूक्रेन पर फौजी हमले के लिए हाईटेक सामान की खरीदारी की गरज से जापान को बतौर मरकज इस्तेमाल किया। NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।